சுதிசவாயிலே சபயபுதா தினி நிறை விபூதி சிருஷ்டிகா பசிபேரமா பரலாயமா மொய கிரந்து பகாத் முதேகி பாயக கோய் சைனா கஹேலே நிறை சருஜகா सते रजर तमगण पञ्चय महाभूत दशै सृष्टिका पहिले मै थिए भगत कोही थिएनन् अरु जो देख्छौ अहिले सबै बुझ तिमी मेरै विभूतिहरु सृष्टिका पछि फेर महापरलायमा मै ग्रहन्छु भगत

0: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: रेडियो सैलो सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

नमस्कार रेडियो सैलो सामुदायिक एफएम बैंडमी 7 मेगाहर्ज म बद्रीप्रसाद सागकोट आज विक्रम संवत 2083 साल श्रावण शुक्ल पक्ष सन 2026 अगस्त 19 तारीख भाद्र 3 गते बुधवार सप्तमी तिथि अब स्तुति गरौं आयु द्रोण कुमार कैसरी हो सक्षण कल्पय भरी।

सारी छयाउन राजा नउस्काय सारे दौलतले परिपूर्ण होस पवन जाय नै परेका घरे मन्दाकुन सबले दुर्योधन समान कर्णै समान दानमा तागत श्री बलराम कैसरी होस् सद्वात कै काममा राजा धर्म कुमार कैसरी होस् श्री ब्रह्म ज्ञान अनि विदुर कैसरी ज्ञान होस् सुजनमा मानुन बडाले पनि कृति उज्ज्वल होस् श्रुत सहित।